श्रोताओं सुप्रभात। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि तदनुसार 22 अगस्त सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख एवं वाचन स्वर श्याम भास्कर के हैं।
1: उपनिषदों में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और गुरु के बिना जीवन का अर्थ तय नहीं हो सकता। मुंडक उपनिषद में गुरु को ज्ञान का एकमात्र द्वार बताया गया है। कर्म से प्राप्त होने वाले लोक अनित्य हैं, इसलिए नित्य ज्ञान के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जिसके पास गुरु है वही सत्य को जान पाता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता से कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान तर्क से या साधारण व्यक्ति से नहीं मिल सकता। जो उस ज्ञान में स्वयं स्थित है वह गुरु जो दृष्टा हैं यह अमूल्य ज्ञान दे सकते हैं। तभी तो भारतीय शास्त्रों में उपनिषदों का विशेष महत्व है। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के निकट बैठना, अर्थात गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। आम जीवन में गुरु का महत्व बहुत व्यापक और व्यावहारिक है। आध्यात्मिक गुरु की जगह ये आज के आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले, ज्ञान और कौशल देने वाले शिक्षकों का महत्व भी कम नहीं है। इनके अभाव में या इनकी कोशिशों के बिना हम सभ्य और सचेतन इंसान नहीं हो सकते। ये ज्ञान और शिक्षा देने वाले शिक्षक गुरुकुल से बाहर हमारी सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने से जुड़े हो सकते हैं। किसी बच्चे के लिए उसकी माँ उसकी प्रारंभिक पाठशाला की तरह होती है। बच्चा पहली बार अपनी माँ से ही भाषा और संस्कार सीखता है। ये शिक्षक घर के बड़े लोगों में से कोई या एक से अधिक हो सकते हैं। बहनें, भाई, भाभी, चाची, दादी, नानी और सबसे ज़्यादा माता पिता। स्कूल के शिक्षकों की भूमिका उसके बाद आती है। वे स्कूल कॉलेज के शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षक

या कोई कला कौशल सिखाने वाले उस्ताद हो सकते हैं जिनके मार्गदर्शन के बिना सीखना कठिन और समय लेने वाला होता है। जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर उनके अनुभव काम देते हैं। युवा अपने कैरियर की शुरुआत इन्हीं के मार्गदर्शन में करते हैं जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाकर योग्य और आदर्श नागरिक बनने में हमारी मदद करते हैं। गुरु या शिक्षक अंधेरी रात में दिए की रोशनी की तरह होते हैं, जिनके कारण हम अनजाने रास्तों पर भी आसानी से चल पाते हैं, जो हमें गिरने के समय हमेशा सहारा देते हैं। अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी, धैर्य जैसी बातें हम इन्हीं के सानिध्य में सीख समझ पाते हैं। अच्छे शिक्षक हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमारे लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता खतरनाक और बेकार है और कौन वह रास्ता है जो हमारे जीवन को एक सार्थक पहचान देता है। गुरु या शिक्षक का काम हर कठिनाई में हमारा अवलंब बनना है। वह बुराइयों से सदमार्ग पर ले जाने वाला हमारे लिए हमारा निर्माता होता है। निराशा और दुख की घड़ी में वही हमें उत्साहित करता है कि हम आसन्न संकटों का सामना अपने आत्मबल और विवेक से कर सकें और जीवन में आने वाली बाधाओं से डटकर मुकाबला कर सकें। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संबंध सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं है।

0: और दुख की घड़ी में वही हमें उत्साहित करता है कि हम आसन्न संकटों का सामना अपने आत्मबल और विवेक से कर सकें और जीवन में आने वाली बाधाओं से डटकर मुकाबला कर सकें। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संबंध सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं है। संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला या अन्य शिल्प विधाओं में हम बिना गुरु के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य के बिना प्रवीण नहीं हो सकते।
1: ये था आज का चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान बालकन, रासायनिक खाद सब आ कीटनाशी दवाई सबक अंधाधुन प्रयोग से माटिक स्वास्थ्य आ ओकर उर्वरा शक्ति दुनू के नुकसान भेल अछि। दीर्घकाल तक नीक उपजा प्राप्त करबाक लेल ई जरूरी अछि जे खेत के माटिक स्वास्थ्य के नीक जकाँ ध्यान राखल जाय आ समय समय पर माटिक जाँच सेहो कराओल जाय। संगहि जाँचक अनुसारे फसिल सभक लेल जैविक आ रासायनिक उर्वरक के मात्रा सेहो निर्धारित कयल जाय। आजुक दिन अपना सब चर्चा करब समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के संबंध में। फसिलक लेल पोषक तत्व सभक सबटा स्थानीय उपलब्ध स्रोत सभक उर्वरक सब, खाद, फसिल अवशेष, जीवाणु खाद सभक मिलल जुलल रूप। किसान भाइयों के लाभ के संबंध में अगर गौप करी तो उर्वरक सभक अभाव में सेहो समुचित फसल पोषण, उर्वरक सब पर निर्भरता में कमी, मृदा स्वास्थ्य नीक, माटिक उर्वरा शक्ति में वृद्धि, सूक्ष्म पोषक तत्व सभक कमी से बचाव, टिकाऊ और लाभकारी खेती। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक के 10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद और नील हरित शैवाल के संग धान के फसिल में उपयोग कला से अनुशंसित उर्वरक के मात्रा के 1/4 कमी कैल जा सकते है। किसान भाइयों, 10 टन बायोगैस स्लरी कंपोस्ट या जलकुंभी कंपोस्ट का प्रयोग से धान आ गहूँ में 10 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर के अलावा आन पोषक तत्व सबके बचत कैल जा सकते है। 1% यूरिया के घोल में डुबा कर माटि में 3 बरख तक लगातार व्यवहार कला के बाद धान और गहूँ प्रत्येक में 50% अनुशंसित उर्वरक के बचत कैल जा सकते है और सूक्ष्म पोषक तत्व के कमी दूर होते है। किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ेबा में उर्वरक का महत्वपूर्ण स्थान है। ताहि कारणे बेसी उपजा प्राप्त करबाक लेल उचित और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग आवश्यक है। किसान भाइयों, लक्षित उपजा के लेल उर्वरक का प्रयोग केला से बहुत बेसी लाभ होते है। जेना कि माटिक उर्वरा शक्ति बेसी समय तक बनल रहते है, माटिक उपज क्षमता के ज्ञान होते है। उर्वरक का प्रयोग आमदनी के अनुसारे कैल जा सकते है। विभिन्न प्रकारक फसिल के खेती के लेल उर्वरक आवश्यकता का ज्ञान होते है, जाहि से कृषकगण खेती करवा से पहले उर्वरक के भंडारण कह सके छथि। मौसम के अनुसारे उर्वरक का व्यवहार कम व बेसी मात्रा में कैल जा सकते है। फसिल के उपजा के निर्धारण होते है, माटिक जाँचक आधार पर उर्वरक के प्रयोग से उर्वरक के उपयोग क्षमता में वृद्धि होते है। किसान भाइयों, उर्वरक के कमी के समय उपलब्ध उर्वरक फसिल के प्रयोग अ तरहें जखन अपना सब खेती करब तो निश्चित रूप से अपना सबके लाभ हेवे करत। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा संपन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: ये था किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा। वाचन स्वर आशुतोष कुमार झा का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू श्यान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब हिंदी में ही समाचार होंगे हमारे दिल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी।

0: आज की स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे सिर दर्द के कारण, उसके लक्षण के बारे में और इलाज के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भुवन जी झा। डॉक्टर भुवन जी झा, जितनी आबादी है दुनिया की, उसकी अमूमन 40 से 50% आबादी तक जो है किसी न किसी प्रकार की सिर दर्द से परेशान है। ये सिर दर्द है क्या, क्यों होता है ये?
1: देखिए, सिर दर्द जैसा कि नाम ही है कि जो आपका सर है उसमें दर्द होना, तो सर में दर्द होना मतलब आगे भी हो सकता है, सर के बगल में या सर के पीछे में दर्द होता है तो उसको सर दर्द बोलते हैं। इसके कारण क्या क्या है? इसके कारण ब्रॉडली यदि हम लोग मेडिकली इसको डिफाइन करते हैं, प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक का ये मतलब होता है कि जो आपका सर में जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत, जैसे कि मान लीजिए आपको घाव है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में मान लीजिए एब्सेस बन गया है, उसके कारण हो सकता है, या ड्यूरा में कोई इरिटेट कर रहा है उसके कारण हो सकता है, और सेकेंडरी कॉज में कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे बहुत सारे केसेस जो हमारे पास आते हैं उसमें साइनोसाइटिस एक बहुत बड़ा कारण है। साइनोसाइटिस का क्या मतलब होता है कि आपके साइनस में इन्फेक्शन की बात या इन्फ्लेमेशन हो तब आपको हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यदि आँख में यदि प्रॉब्लम हो तो आपको सर दर्द हो सकता है। एक और जो कि खराब कारण है ये होता है कि यदि आपके ब्रेन के अंदर में कोई ट्यूमर हो उसके कारण भी आपको सर दर्द हो सकता है। सर दर्द के कारण तो बहुत ज़्यादा है, यदि ब्रेन हिमरेज हो उसके कारण भी सर दर्द हो सकता है। तो सिम्टम में आप यदि देखें कि आपको सिर्फ सर दर्द हो रहा है तो बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन यदि सर दर्द के साथ उल्टी भी आती है या सर दर्द मॉर्निंग के समय में होता हो और उसके साथ उल्टी होती हो, ये एक वार्निंग और रेड फ्लैग साइन है, तो जरूर आप इमीडिएट दिखाएं। यदि सर दर्द बहुत दिन से रह रहा हो, आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आप एक बार चिकित्सक से सलाह जरूर लें।
0: आधे माथे में होने वाला दर्द, ये दर्द क्या है डॉक्टर साहब?
1: मेडिकल टर्म में माइग्रेन हम लोग बोलते हैं। ये एक तरह का सरदर्द ही होता है और मोस्ट कॉमनली फीमेल जो होती हैं उसमें ये ज़्यादा दर्द होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है हमारे हेड में उसके इन्फ्लेमेशन के कारण इसमें दर्द होता है। अब क्या है कि इसमें सिम्टम क्या क्या आता है, तो इसमें सरदर्द के साथ किसी किसी को उल्टी की भी संभावना रहती है। दूसरा, जब ये दर्द होगा तो इससे कुछ देर पहले आपको ऐसा एक फील होगा कि हमको कुछ आँख के सामने में वाइट वाइट जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग ऑरा बोलते हैं। तो हेडेक शुरू होने से पहले ऑरा की संभावना होती है, आपको उल्टी हो सकती है, एक साइड में आपको सर दर्द हो सकता है, और ये सर दर्द हो सकता है कि यदि आप दवा ना लें तो दिनों तक रहे। तो यदि आपको ऐसा दर्द होता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे हैम्पर होती है तो आप जरूर इसके लिए दवाई का सेवन करें।
0: डॉक्टर साहब, कई बार जो स्ट्रेस कहते हैं ना, टेंशन टाइप हेडेक है क्या?
1: ये क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो सर्वाइकल मसल्स है, ब्रेन जो हेड के पीछे का मसल्स है, उसमें एक टाइटनेस आ जाती है और उस टाइटनेस के कारण आपको दर्द होगा, तो इसी को टेंशन टाइप ऑफ हेडेक बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली जैसे जैसे डे प्रोसीड करता है, जैसे कि आफ्टरनून या इवनिंग में ये दर्द ज्यादा महसूस होगा आपको। इसके साथ जरूरी नहीं है कि उल्टी हो, लेकिन उल्टी हो भी सकती है, बहुत ज्यादा ना घबराएं ये। लेकिन यदि उल्टी के साथ प्रेजेंट हो रहा है या बहुत दिन से दर्द है, दवा खा रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है, या दवा ज्यादा खाने की जरूरत हो रही है, तो आप नियर बाय जो चिकित्सक न्यूरो के डॉक्टर हैं उनसे मिलें।
0: विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसा सर दर्द जो पहले जीवन में कभी नहीं हुआ, इतना तेज दर्द हो, वो खतरनाक स्थिति है।
1: वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ मतलब सबसे बड़ा सरदर्द जो आज तक आपकी जिंदगी में ना हुआ हो, ये रेड फ्लैग साइन है। इसमें आप बिल्कुल डिले ना करें और इसमें तुरंत ही जो नियर बाय चिकित्सक हैं उनसे मिलें। क्यों? क्योंकि इसमें रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो ब्रेन में नस है वो हो सकता है कि वो फटा हो, और वो फटता कैसे है? फटता ऐसे है कि मान लीजिए आपका बहुत हाई बीपी हो, आप दवाई नहीं खा रहे हो। दूसरा होता है कि कई बार आप सुनते हैं कि कोई स्टूल पास करने गया, पैखाना में गया, उसने जोर लगाया और वहीं पे बेहोश हो गया, तो ये सब एक कारण, या बहुत किसी को खांसी हो रही हो, तो वो सब कारण है जिसमें कि ब्रेन का नस वो फट जाता है।
0: अहम सवाल, सरदर्द की अनदेखी करें ना करें?
1: मोर देन 90% जो हेडेक है उसमें जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन ये समझना कि किसमें जान का खतरा है किसमें नहीं है, ये एक चिकित्सक ही कर सकता है। रेड फ्लैग एकदम जो आप बोलेंगी, दो आप ऐसा बोलिए जिसमें कि आपको इमीडिएट जाना हो, तो एक तो वर्स्ट हेडेक है जो कि ऐसा हेडेक जो आपको कभी नहीं हुआ हो, और दूसरा जो हेडेक के साथ यदि उल्टी हो तब तो आप इमीडिएट जाएं। लेकिन एक जो रेड फ्लैग उसमें भी है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, जो कि स्कैन से ही समझ में आता है, वो है स्लो ग्रोइंग ब्रेन का ट्यूमर।

0: जो कैंसर भी हो सकता है,
1: जो कैंसर भी हो सकता है, जो एकदम स्लो ग्रो कर रहा है उसमें आपको धीमा धीमा दर्द हो सकता है।
0: डॉक्टर भुवन जी झा, सिर दर्द के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना के साथ।

अभी आपने सुना समूह स्वर में ये देशगान। अब सुनते हैं विपिन सचदेवा के स्वर में ये गणेश वंदना।

कार्यक्रम वंदना संपन्न हुआ। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर रविंद्र साठे के हैं।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 1,00,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: रामचरितमानस गाना भी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। प्रातः 7:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात का समय होता है प्रातः 8:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन प्रातः 9:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे इस सभा में 9:50 पर, 2:30 पर और 11:30 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत। प्रातः 11:00 आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार होता है 12:30 पर। कुछ नए फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे इस सभा में 12:00 और दूसरी सभा में शाम 5:40 पर। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी पसंद दोपहर 1:15 पर। दोपहर 2:00 आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 2:10 पर रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का समय होता है 2:15। दोपहर 3:00 आज आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत कुछ राजस्थानी गीत अनुराधा पौडवाल एवं साथियों के स्वर में। ये थे हमारे इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण मिथिला के साथ की जाएगी। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। 6:25 पर होता है मैथिली संवाद और गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा 6:30 पर। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार होगा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे रात्रि 8:00 और 8:15 पर होगा कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित की जाने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत और हिंदी में। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: 55 मिनट होने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचक

0: उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं सुरक्षितं कर्तुं भारतं नीतिनिर्माणस्तरे नवपरिष्कारान् करोति।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् तस्य प्रशासनं केवलं नियमेषु परिवर्तनं न करोति अपितु तेषां नियमानां पृष्ठे विद्यमानायाः सम्पूर्णदृष्टेः परिवर्तनमपि करोति। सः उक्तवान् यत् पूर्वं नियमसम्बद्धदृष्टिः अनुमतिपर्यन्तं निषिद्धम् इति आसीत्, अधुना च प्रशासनं तां दृष्टिं परिवर्त्य निषेधपर्यन्तम् अनुमतम् इति दिशि अग्रेसरति। भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितं ब्रिक्स पर्यटनमन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः जयपुर घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्नम्। एतत् घोषणापत्रं ब्रिक्स सदस्य देशानां मध्ये पर्यटनक्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं कार्ययोजना प्रददाति। घोषणापत्रे सहयोगस्य प्रमुखक्षेत्राणि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेषु पर्यटनक्षेत्रे कृत्रिमबुद्धेः उपयोगः, स्थायी पर्यटनपद्धतयः, कौशलविकासः, अबाधितयात्रायाः सौविध्यानि च सम्मिलितानि सन्ति। उपवेशनस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः राजस्थानस्य जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन सम्बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमन्त्री ह्यः पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामी मासस्य पञ्चमदिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञानभवने 48 विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षामन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे, राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिताः 48 शिक्षकाः 27 राज्येभ्यः, 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः अथ केन्द्रप्रशासनस्य 6 संस्थाभ्यः च सन्ति। चयनितेषु 48 शिक्षकेषु 26 पुरुषाः, 22 च महिलाः सन्ति। भारतर्तुविज्ञानविभागेन अद्य पूर्वमध्यप्रदेशे प्रचण्डात् अतिप्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुरम, मिजोरम, त्रिपुरा राज्येषु सोमवासरपर्यन्तं प्रचण्डवृष्टेः सम्भावना वर्तते। अद्य दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तरप्रदेश, ओडिशा, उत्तराखण्ड, हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः सम्भावना वर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है।

0: रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के 45 दिन के भीतर ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। 2 दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने तथा अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाने पर भी विचार साझा किए और इन मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।